बंदगी कर तू अगर नादा नहीं। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। नथिंग विल बी फेथफुल टू मैन, नथिंग। इफ यू लुक एट द बॉडी ऑफ मैन, द आईज फेल विद एज, इवन इफ अ पर्सन हैड गुड साइट, आफ्टर सम टाइम देर इज अ फेलियर ऑफ साइट, हियरिंग फेल्स, द टीथ ऑल्सो डोंट रिमेन, आफ्टर सम टाइम दे से टीथ ऑल फेल ऑफ, the person's beauty goes away with old age, everything goes, so nothing remains with the person. But if he has accumulated good deeds with him, then these good deeds will accompany him right through, they will be helping him right through in the qabr, in the akhirat. So he says, ghaflat o masti tujhe shaya nahi, make use of the things of the world. Allah Ta'ala did not say don't make use of it, but to become so engrossed that you forget the giver of those ni'mats, that does not befit a Muslim. Husn-e zahir par agar tu jayega, aalam-e-fani se dhoka khayega. Husn-e zahir

आपका मर्तबा इस जहां में जैसे खुर्शीद हो आसमां में। दोस्तों ये है शहरे मदीना जिससे इस्लाम फैला जहां में।

तेरे दर पर मेरा सर हो या रब, जान इस तरह तुझ पर लुटाए, तेरे दर पर मेरा सर हो या रब, जान इस तरह तुझ पर लुटाए। मुझको अपना बना लो करम से,

या रब करम से अपने तो दोनों जहान दे, जो मुस्तहिक गजब का है उसको अमान दे।

ताकों में सजाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं. आई एम प्लेस्ड ऑन हाई शेल्व्स, आई एम पुट ऑन द आईज फॉर बरकत. तावीज़ आर मेड, आयात ऑफ द कुरान शरीफ, फॉर नथिंग एल्स बट तावीज़. वी डोंट से इट्स नॉट परमिसेबल, बट वॉज दैट वॉट इट वॉज रिवील फॉर. खुशबू में बसाया जाता हूं, जुजदान हरीर और रेशम के, एग्जैक्टली लाइक व्हाट द बनी इसराइल डिड. द कवर्स इफ यू हैव टू सी ऑफ द कुरान शरीफ दिस डेज एंड द प्रिंटिंग ऑफ द कुरान शरीफ एंड द आउटवर्ड डेकोरेशन ऑन द कुरान शरीफ, देन इंडीड इट बिफिट्स दैट कुरान शरीफ. बट वॉज दैट द ओनली मकसद एंड पर्पस? जुजदान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है. Put itar, put perfume on the Quran Sharif covers.

बस एक अगर हूं तो खार में हूं। अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ माई यंग फ्रेंड्स हू डोंट अंडरस्टैंड उर्दू, ओ अल्लाह, इन योर गार्डन everyone is a flower. The only thorn in your garden is myself.

बस एक अगर हूं तो खार में हूं, मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूं। रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मशगूल कार में हूं। रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मशगूल कार में हूं। अल्लाह गिव मी ऑल्सो सम कंसर्न ऑफ द आखिरत। Oh Allah, give me also, bless me also with some concern of the akhirat, the life of the hereafter, which is going to be unending. Give me some concern of the day of judgment, some concern of the accountability on the day of qiyamah before you, oh Allah. Raha mein bekar zindagi bhar, again, oh Allah, I remained useless all my life. Now make me or get me occupied in something useful.